एलजीले आयो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई, नागरिकता भए पुग्छ। हरेक घरको खुसी, घर घरमा एलजी। एलजी, लाइफ गुड।

घुम घाट राइडमा जाम साथी धुमधाम राइड छ फन नयाँ इभी मेरो टियागो इभीसँग लाइट छ सुपर फन Elders love it, so do they all. It's safe, it's playful, catch the fun. Go.